0: जुड़े हो तुसी रेडियो प्रोग्राम सब रंग दे नाल। स्टूडियो दा नंबर है 647-367-5353 647-367-5353। एक नंबर तुहानू होर देईए 416-525-7400 416-525-7400। रियल एस्टेट दे विच जानिया पहचानिया नाम इंदर अरोड़ा ते रमन कथूरिया। तुसी कोई प्रॉपर्टी लेनी है या प्रॉपर्टी कोई वेचनी है तां इन्हां दे नाल संपर्क कर सकदे हो। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके दे नाल बड़ी फेयर डीलिंग इन्हां दी है। तुहाडी प्रॉपर्टी कोई लैण वेले या देण वेले, तुहाडी मॉर्गेज दे बारे, तुहाडी डाउन पेमेंट दे वेले या कोई होर डाकूमेंटेशन जिस दी भी जरूरत हुंदी है बहुत डिटेल दे विच तुहानू जानकारी देणगे। बिल्कुल फेयर डील दे नाल फोन नंबर नोट करो 416-525-7400 416-525-7400। सत श्री अकाल जी खलील जी, क्या हाल चाल है
1: जी? सत श्री अकाल, बिल्कुल ठीक हूं दर्शन साहब, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी।
1: जी तो आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका आंसर है ह्यूमन, इंसान।
0: हाँ क्या बात है, क्या बात है खलील जी, आप तो बिल्कुल ठिकाने का ठिकाने पर पहुंच गए। मैंने तो सोचा भी ये थोड़ी सी बजारत तो मुश्किल होगी, इसका आंसर बड़ी देर में आएगा, लेकिन आपने तो तुरंत ही जान लिया ये। बिल्कुल सही बात है जी, जब बचपन होती है तो चार टांगे होती है। बड़ा फिलोसफिकल आंसर है इसका, फिलोसफिकल क्वेश्चन है, कोई इसकी इतनी आसान भी नहीं है।
1: जी हाँ, फलसफी की किताबें बहुत पढ़ता हूँ मैं, इस वास्ते ये चीजें कभी भी जहन में रहती। हाँ। क्योंकि फिर जब होता भी तो आदमी तो बिल्कुल वैसे रहता ना, बच्चे की तरह हाथ पैर यूं करता।
0: जब बचपन में होता है ना, छोटे बच्चे की चार होता है, वो टांगों पे भी चलता है और हाथ लगा के भी चलता है। जब जवान हो जाता है उसकी दो टांगे हो जाती है, जब बूढ़ा हो जाता है तो हाथ में लाठी आ जाती, फिर तीन हो जाती है उसकी।
1: जी जी, खुशी होती है, ऐसी चीजें

सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-5333 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

सगला रूप मिटाया काम रोग गए जर बचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समर्थ स्वामी पूरण पुरख विदाता रहा आनंद विनोद मंगल गुरदाव गुरु नानक भय दयाला जय जय।

परमेश्वर उधरिया सब संसार मेरा सब कुछ रखवाला हुआ दान कृपा सब हाथ मेरा दिया पर गोवत नवा निरुआ रहा ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साथ संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई।

श्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु तिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्व

सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये व्यस्त्रादिनो देवि दुर्गा।

हाँ सभी श्रोताओं का संसार में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। तो आपके लिए अब मौसम बहुत ही खिला हुआ है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं, बहुत ही बढ़िया मौसम है। तो अभी बच्चों को भी साल के महीने के अखीर में छुट्टियां हो जानी है, और जिनके बच्चे ग्रेजुएट करेंगे उनको ग्रेजुएशन होनी है, उनको बहुत बहुत सारी बधाई हो। और अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, या फिर आपने कभी किसी किस्म की भी आपको बढ़िया फर्नीचर चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बढ़िया टीवी चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ब्लॉक में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, उनकी स्पेशल देखिए। फिर फादर्स डे के लिए गिफ्ट खरीदना है तो बस अभी से ऑर्डर करके अपना ऑर्डर कीजिए। तो 905-799-0045-799-0045 पे आप इनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हैं। तो फादर्स डे के लिए अगर आपने सोने की गहने, सोने की चेन खरीदनी है, आप शादी एनिवर्सरी बर्थडे के लिए आपको गहने चाहिए, तो आपको जाना होगा अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए मौजूद है वाल्टन एयरपोर्ट रोड पे। और जानकारी के लिए, ऑर्डर बुक करने के लिए, फादर्स डे के लिए या शादी एनिवर्सरी बर्थडे किसी भी मौके के लिए, तो आप 905-600-01-00 पर कॉल कर सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब अगर आपने मूवी करनी है तो आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिएगा, उनके कनाडा घर में आपको मदद करते हैं मूव होने में, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं अपना ट्रक बुक करने के लिए, आज ही कॉल कीजिए 416-524-7604-1645-24-6704 पे आप एच मूवर्स को कॉल कर सकते हैं मूविंग के लिए, कहीं भी मूव करना है कनाडा भर में। और अब अगर आप कितना वाटर गोल्फ में घर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप नसीब फ्रेंड को कॉल कर लीजिए 519-546-519-546-1260। तो आइए अब आपको एक बड़ा प्यारा सा गीत सुनाते हैं, पंजाबी का गीत सुनाते हैं आपको। और अब अगर आपने किसी किस्म की भी ट्रक रिपेयर करवानी है तो आप कॉल कर सकते हैं बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर, जो कि आपके लिए 1715 में मौजूद है। तो और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 पर कॉल कीजिए, 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आपको गुरदास मान जी का गीत सुनाते हैं। जी हाँ, तो उनके जो गाने हैं, उनकी फिल्में भी हैं, पंजाबी फिल्म में भी उन्होंने काम किया है, तो गाने आपके लिए पेश करते हैं। और आपको कभी भी किसी तरह की भी आपको सोने के गहने लेने हैं, सोने की बाज लेनी है, तो अल मदीना ज्वेलर्स 905-600-01-00 पर आप अल मदीना ज्वेलर को कॉल कर सकते हैं। तो आप जरूर उनको कॉल कीजिए, पहले से ही आप कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी अपने ऑर्डर बुक करना है फादर्स डे के लिए, तो आप कर सकते हैं अल मदीना ज्वेलर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, और अपने फादर डे ऐसा गिफ्ट, अपने डायमंड लेने हैं तो 70% ऑफ है अल मदीना ज्वेलर्स पे आपको। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये होता है कि गुरदास मान जी ने बढ़िया बढ़िया छल्ला उनके ऊपर, वो हर एक जमाना था कि बजाया जाता था, दिन ऐसा नहीं होता था जबकि तुम छल्ले को, छल्ला वाला जो उनका गीत है वो

0: ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਜ਼ਲੀਆਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖੁਲਕੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਗਿਆ
1: जी हाँ, तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से सार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब आपने अगर किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना हो तो आप जाइएगा मास्टर कोलिजन डिपो लंदन के आसपास के इलाके में। अगर आप रहते हैं तो मास्टर कोलिजन डिपो अब लंदन में मौजूद है। तो अगर आपने किसी किस्म की भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप वहां पे उनको कॉल कर सकते हो। और ये जो उनका शोरूम है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। तो ये उनका जो गोर रोड पे लंदन में आप मास्टर कोलिजन डिपो की सेवाएं ले सकते हैं। किसी तरह की भी आपको सेवाएं लेनी हो तो आप वहां पे उनको कॉल करिएगा और हर तरह की सेवाएं वहां पे आपको मिलती है। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा गीत सुनाते हैं। तो ये जो आपके लिए गाना है ये मिस पूजा का है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर आपने फ्रिज तो वाशर ड्रायर बढ़िया लेना है, टीवी बढ़िया लेना है, आउटडोर फर्नीचर, किचन की गैजेट्स, या फिर आपने बारबेक्यू बढ़िया लेना है, फादर्स डे के लिए गिफ्ट लेना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव करने के लिए आपको आपकी पूरी मदद करते हैं। तो आपको कहीं भी आपको मूव होना है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो 416-524-704 तो आपने HK मूवर्स आपकी पूरी मदद करते हैं मूव होने में और कनाडा भर में मूव होने में आपकी पूरी मदद करते हैं। मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे आपके लिए। आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा और वहां पे उनकी सेवाएं आप ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार।

तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-1990 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

रखवाली सुख सहज आनंद पुरगावा मन तन देह सुखाली रहा पतित उदाहरण सतगुरु मेरा मह किसका परभाषा।

जमे जिय जंत आपे राखे जमे कियो हटदार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरी है पाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सणी उबरे पाई

आई पाई मन तन शीतल हो संत हो हर हर नाम तिहाई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियना फल पाई रहा।

सब संसार मेरा सतगुरु रखवाला हुआ दान कृपा सब हाथ मेरा दिया पर गोविंद नवा निरुआ रहा ता छाया जब आप मिटाया जन की लाज रखाई साथ संगत ते सब बल पाए सतगुरु कै बल जाई।

जी अजंत सब तिसके किए, सोई संत सहाए, अपने सेवक की आपे राते, पूरण भई बढ़ाए, पात्र हम पूरा मेरा ना।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

सतगुर होए दयाल तसरदा पूरीए, सतगुर होए दयाल न कभू चूरीए, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुकी जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर दे विच रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहर लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू। स्टूडियो के घड़ी के मुताबिक 6:10 हो चुके हैं। थोड़ा साड़ा साथ होने तो लैके 8 तक बने रहेगा। रोज़ की तरह रमेश हशियारपुरी जी खबर का पूरा हाल लैके पहुँचे। अज कुछ गल्लां बातां लंबियां हो सकदियां ने क्योंकि अज प्रोग्राम 2 का नाल दे नाल अज का सारा प्रोग्राम साडा जून 1984 दरबार साहब ते होए हमले दे विच उन्हां शहीद बच्चियां बजुर्गों औरतों बेकसूर लोगों नूं समर्पित 905-673-3333 स्टूडियो एक नंबर 905-673-3337

0: 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
1: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट
2: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, कोस टू कैनेडी एंड स्टील्स, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600, 905-451-2600,

तो बाद एक बार फिर तो बहुत निघा स्वागत है। म्यूजिकल ब्रेक से छोटी छोटी ब्रेक्स आप जरूर लवेंगे क्योंकि प्रोग्राम दे विच तुहाडी पसंद दे सारे गाने चल रहे हैं ते होपफुली तुसी सारे इंजॉय कर रहे होवोगे। ते तुसी ट्यून कीता होया है देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो। मैं हाँ तुहाडी होस्ट मनप्रीत कौर तूर। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों एक मैसेज है तुहाडे सारे दे लई कि आपां एक चंगी कम्यूनिटी तां ही बना सकते हैं। कहिंदे कि जे आपां चंगे नेबर्स होईए है ना, तां नेबर्स आपां चंगे किवें बणांगे, तां कि आपां अपने जिहड़े आंढी गुआंढी ने उहनां नूं अपनी किसी भी एक्टिविटी तो कोई भी प्रॉब्लम ना होवे पहली गल तां। ते जेकर कोई तुसीं अपने घरां दे विच वीकेंड्स ते सपोज है ना या वीकडेज दे विच भी कोई गैट टूगैदर करदे हो, कोई गैदरिंग करदे हो, शोर शराबा थोड़ा जिहा घट करो। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वाले कह रहे ने कि एक्सेसिव नॉइज़ नूं थोड़ा डाउन रखो। ते जिन्ने भी अपने साइडवॉक्स ने या बाइक लेनस ने उन्हां नूं पूरा क्लीयर रखो, ब्लॉक करके ना रखियो बिल्कुल भी। ते जेकर तुहाडे घरां दे विच वेस्ट वगैरह हुण ज़्यादा हो जाता गैदरिंग वगैरह करदे हो, अपने जिन्ना भी गारबेज हुंदा उहनूं इधर उधर सुट्टो ना बिल्कुल भी। ते उहनूं तुसीं प्रॉपरली अपने बिन्स दे विच डिस्पोज करो, इधर उधर डंप ना करो, चाहे कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है चाहे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्लीनिनेस पूरी मेनटेन करके रखो। तो स्ट्रीट पार्किंग लिमिटेड की हुई है 3 घंटे के लिए। जो तुम कि गड्डी पार्क करते हो स्ट्रीट के उपर 3 घंटे तो ज़्यादा पार्क नहीं कर सकते, अदरवाइज टिकट मिल जानी है। तो रात के 2 बजे तो लैके सवेर के 6 बजे तक 2 AM to 6 AM तुसी स्ट्रीट पार्किंग नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हुण मना आ। तो ये भी तुसी जरूर ध्यान रखो, अदरवाइज तुहानू पता फाइनस ब्रैम्पटन सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने इनक्रीज किए हुए ने। ये छोटे छोटे सिंपल एक्शनस ने बट काफ़ी वड्डे रियल डिफरेंसिस क्रिएट कर सकते हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की साइट के उपर जाओ, तुसी एक देखोगे टाइटल स्प्रिंग समर एनफोर्समेंट रिमाइंडरस, ये तुसी पढ़ सकते हो पूरा प्रॉपर। तुहानू सारे बायलॉज जिन्ने भी हैगे नेगे वो तुहानू पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जूगी। brampton.ca/bylaws तुसी गूगल के उपर सर्च करोगे तो तुहानू यह सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की साइट के उपर जाके स्प्रिंग समर एनफोर्समेंट रिमाइंडरस ने जिहड़े उहदे विच पूरी डिटेल तुसी पढ़ सकते हो। तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के वलों ये मैसेज तुहाडे तक पहुँचाया जा रहा। 3:12 के कुछ सैकेंड हो गए हैं। स्टूडियो का नंबर 905-564-44 905-564-6444 के उपर तुसी कॉल्स कर सकते हो। मैं तुहानू जानकारी दे दिया कि जेकर तुसी अपने घरां दे विच डक्ट क्लीनिंग कराने होने करवाना चाहते हो तो अकाल डक्ट क्लीनिंग दे नाल गलबात करो। ये फर्स्ट एवर कंपनी है डक्ट क्लीनिंग की अपनी कम्यूनिटी की जिड़ी कि पिछले 40 सालों तो तुहानू सर्विस दे रही है। 7 दिन ओपन रहिंदे ने, बहुत ही प्रोफेसनल डक्ट क्लीनिंग ये करते हैं, पूरी स्पैशलाइज्ड ने ये अपने प्रोफेशन दे विच। जे तुसी अपने एयर कंडीशनर्स या फर्नेसिस नू रिपेयर करवाना होवे या इंस्टॉल करवाना होवे तां वी तुसी इन्हां दे नाल कॉन्टैक्ट करो। जिहड़ी इह डक्ट क्लीनिंग करदे ने अप टू 3,000 square feet अनफिनिश्ड बेसमेंट, रेगुलर प्राइस $250 है, $250, बट जेकर तुसी ब्रैम्पटन या मिसी सागर दे विच रहिंदे हो तां देश परदेस रेडियो दी रेफरेंस दिओ, $140 दे विच अप टू 3,000 square feet अनफिनिश्ड बेसमेंट तुहाडे लई इह डक्ट क्लीनिंग करके जाणगे $140 दे विच। इह ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा दे कस्टमर्स दे लई है, अदरवाइज रेगुलर प्राइस $250 है, $250 इह तुसीं सर्विस लै सकदे हो अकाल डक्ट क्लीनिंग तो। हरमिंदर सिंह जी नूं कॉल करो, नंबर है 416-710-0662, 416-710-0662 दे उपर तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अकाल डक्ट क्लीनिक दे नाल। नेक्स्ट फरमाइशी गाना बब्बू मान दी आवाज़ दे विच इंजॉय करो, सुंदरो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. This is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: संगीत रुदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
1: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
1: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
1: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
1: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज।

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम अर्ज है। आज आपके दिलों पर मोहब्बत भरी दस्तक देकर थोड़ा सा मदहोशी के आलम में ले जाने के लिए शेरो शायरी से लबरेज गजलों का एक मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूं, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां। समीन, गम और खुशी, ये जिंदगी के वो दो पहलू हैं जो धूप और छांव के साथ साथ जिंदगी के सफर के साथ हमेशा चलते रहते हैं। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए, मुश्किलों से भी कभी दो चार होना चाहिए। मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, मानता हूं है जरूरी काफिया वजनो बहर, सोच का भी तो जरा थोड़ा सा विस्तार होना चाहिए। गम से यारो सामना एक बार होना चाहिए।

समीन चलते हैं कहकशां के उस दौर में, सुखनवरी के उस पार, जिसे बहुत ही उम्दा आवाज के साथ नवाजा है जगजीत सिंह ने। इस गजल से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, जिसे खाली मकान कहिए वो कोई घर नहीं होता, कि जिस घर में मोहब्बत ना हो उसका एहतराम नहीं होता, जो दिल को ठेस पहुंचाए ना हो इंसानियत जिसमें, वो कुछ भी हो मगर यारो कभी शायर नहीं होता। तो शायर उसे कहते हैं जो अपनी कलम की एक बूंद से समंदर लिख देता है। तो आइए कुछ ऐसी ही गजल में आपको डुबोने के लिए एक बहुत ही उम्दा आवाज, जिसे जग को जीतने वाली आवाज कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज।